आवाज़ इत्याजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में रेडियो आवाज़ इत्याजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है. आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज़्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं.

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

शतरंज एक रोचक खेल है और हमारे बौद्धिक विकास में यह अहम भूमिका निभाता है। दुनिया के बहुत देश इस खेल को विकसित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। ताजिकिस्तान में भी कई बार शतरंज तेजी से विकसित हो रहा है। ताजिकिस्तान का सरकार बच्चों और वयस्कों को शतरंज खेलने में प्रेरित करने के लिए चेस प्रतियोगिताओं के साथ साथ गणतंत्र के राष्ट्रपति का शतरंज कप भी आयोजित करता है। इस तरह वास्तव में 2-3 सालों के बीच लोगों की रुचि इस खेल में बहुत हो गई है। इस समय शतरंज खेल के बारे में कई जानकारी पेश करेंगे।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

शतरंज एक रोचक खेल है और हमारे बौद्धिक विकास में यह अहम भूमिका निभाता है। दुनिया के बहुत देश इस खेल को विकसित करने की कोशिश कर

करता है। इसके लिए शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। ताजिकिस्तान में भी कई बार शतरंज तेजी से विकसित हो रहा है। ताजिकिस्तान का सरकार बच्चों और वयस्कों को शतरंज खेलने में प्रेरित करने के लिए चेस प्रतियोगिताओं के साथ साथ गणतंत्र के राष्ट्रपति का शतरंज कप भी आयोजित करता है। इस तरह वास्तव में 2-3 सालों के बीच लोगों की रुचि इस खेल में बहुत हो गई है। इस समय शतरंज खेल के बारे में कई जानकारी पेश करेंगे।

शतरंज बेहद रोचक खेल है जिसे हर उम्र के लोग खेलते हैं हालांकि इसे अभी ओलंपिक खेलों में नहीं जोड़ा गया है फिर भी इसे पूरे विश्व में पसंद किया जाता है इस खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई जिसे पहले चतुरंग कहा गया इसकी उत्पत्ति से लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित है और कई भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख आसानी से देखा जा सकता है पहले इस खेल को केवल राजा महाराजा खेला करते थे जो आगे चलकर सब खेलने लगे कहा जाता है कि रावण ने सबसे पहले इस खेल को अपनी पत्नी मंदोदरी के मनोरंजन के लिए बनाया था आगे चलकर भारत में शतरंज की उत्पत्ति के सबूत राजा श्री चंद्रगुप्त के काल में मिलते हैं ये भी माना जाता है कि पहले से जो पासों का खेल था उससे राजा उब चुके थे और वे आप कोई ऐसा खेल खेलना चाहते थे जिसे बूढ़ी के बाल पर जीता जाए क्योंकि पासों का खेल पूरी तरह किस्मत पर आधारित होता है जिस दौर में इस खेल की शुरुआत हुई थी तब युद्ध का दौर था उस समय युद्ध अभ्यास किए तो जाते थे परंतु सामने शत्रु के मना स्थिति को जानना बहुत मुश्किल हुआ करता था ऐसे में ये खेल बहुत ही सहायक साबित हुआ और बिन मैदान में गए बूढ़ी के बदौलत युद्ध कला को समझना और भी आसान हो गया कई राजा पहले शत्रु को अपने सत्कार के बहाने घर बुलाकर शतरंज खेल उनके मन में चल रहे चल को समझ जाया करते थे शतरंज एक ऐसा खेल बना जिसमें भरपूर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है 6वीं शताब्दी में भारत में पारसियों के आने के बाद इस खेल को शतरंज कहा जाने लगा तो वही ये खेल ईरानियों के जरिए जब यूरोप पहुंचा तो इसे चेस नाम मिला इस खेल में 64 खाने बाने होते हैं तथा इसे दो लोगों के खेलने के लिए बनाया गया था इस खेल में दोनों तरफ एक एक राजा एवं रानी वजीर हुआ करते थे जो कि आज भी वैसे ही है दोनों खिलाड़ियों के पास समान रूप से दो घोड़े दो हाथी दो ऊंट और 8 सैनिक होते हैं ऊंट की जगह पहले नाव हुआ करता था परंतु इस खेल के अरब गमन के बाद इसमें नाव की जगह ऊंट ने ले ली यह एक बेहतरीन खेल है और हर मुहरे के कुछ निर्धारित चाल है जिसके आधार पर सब चलते हैं दोनों खिलाड़ियों को अपने राजा को सुरक्षित रखना होता है जिसके राजा की मृत्यु पहले हो जाती है वो खेल हार जाता है शतरंज में लोगों की इतनी रुचि है और उनके मस्तिष्क में इतना विकास हुआ है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाने लगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को स्थापना दिवस के रूप में मनाता है सन 2021 में यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की 97वीं वर्षगांठ थी और विश्व शतरंज दिवस लोगों को खेल खेलने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है विश्व शतरंज दिवस अधिक लोगों को खेल खेलने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है शतरंज वयस्कों और बच्चों के बीच समान रूप से एक लोकप्रिय गतिविधि है 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में शतरंज ने अपना आधुनिक आकार ग्रहण किया 15वीं शताब्दी के अंत तक यह एक समकालीन खेल के रूप में विकसित हो गया था और यह आज एक लोकप्रिय खेल है शतरंज प्रतियोगिताएं दुनिया भर में ताज़ा और दिलचस्प विविधताओं के साथ आयोजित की जाती है गौरतलब है कि शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है जिसमें खेल वैज्ञानिक सोच और कला के तत्व शामिल है प्यारे श्रोताओं प्रोग्राम के इस पात में शतरंज खेल के बारे में कई मनोरंजक जानकारी सुनाई गई और हम सलाह देते हैं कि अपने मस्तिष्क और सोच को दृढ़ अपने मूड को अच्छा और समय को खुश बिताने के लिए इस खेल से उपयोग करें

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।